वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो सच नाम जी बोलो सच नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए बोलो नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो सच नाम

0: गोविंद जय जय गोपाल जय जय
1: गोपाल
0: राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि।